0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापलियो 14वें का यह विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। श्रोताओं, मैनिफिका ह्यूमानिटास का दूसरा अध्याय हमारे लिए सामाजिक धर्म शिक्षा के मूलभूत आधार और सिद्धांतों की चर्चा करता है। कलीसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा अपने में एक सजीव सच्चाई है जो इतिहास, संस्कृति और विज्ञानों से संवाद करती है। वहीं हम इसे अपरिवर्तनीय सच्चाइयों से भरा पाते हैं। इस यही कारण है यह हमारे लिए ज्ञान का एक स्वरूप है जो सामाजिक जीवन में विश्वासियों को दिशा निर्देशित करने की क्षमता रखती है। इस दूसरे अध्याय में संत पापा लियो 14वें कहते हैं कि मैं सामाजिक धर्म सिद्धांत के मूलभूत बातों और धर्म सिद्धांत पर ध्यान देना चाहूंगा जो हमें हमारे समय की नई चीजों को अनुवाद करने में मदद करेगी, विशेष रूप से वे चीजें जो गहरे रूप में मानवीय सम्मान से जुड़ी हुई हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में मानव की सुरक्षा के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि आज हमें पुनः जन सामान्य के हितों, वस्तुओं तथा वैश्विक मूल्य पूरकता, एकता और सामाजिक न्याय पर चिंतन करने की जरूरत है। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि इन सारे सिद्धांतों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध इस बात की मांग करती है कि हम उन पर सामूहिक रूप में चिंतन करें, जिससे हमारे लिए यह स्पष्ट हो कि वे कैसे एक दूसरे से संयुक्त हैं और कैसे एक दूसरे के पूरक बनते हैं। संत पापा लियो लिखते हैं कि इन चिंतनों को प्रस्तुत करने में मैं इस बात की आशा करता हूँ कि सर्वप्रथम यह लोक धर्मियों और ख्याति प्राप्त लोगों को इस बात के लिए मदद करे कि वे उपयुक्त सिद्धांतों का उपयोग अपने दैनिक जीवन, पारिवारिक संबंधों, कार्य और सामाजिक संदर्भ में करते हों। इस भांति वे अपने को ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होने देंगे जिन्हें वे अपने जीवन की ठोस घटनाओं में देखते हैं। इसके साथ ही मैं शिक्षण संस्थानों और महाविद्यालयों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि वे इन सिद्धांतों को नई गति दें और उन्हें इस भांति उपयोग में लाएं कि वे डिजिटल क्रांति से निपटने में प्रासंगिक और प्रभावी बने। इस तरह धार्मिक और दार्शनिक खोज कलीसिया की प्रेरितिक यात्रा को और आगे बढ़ाने और उसका समर्थन करने में मदद करेगा। साथ ही यह धर्म सिद्धांत के कार्यों में भी योगदान देगा जो विश्वासियों की अंतरात्मा को आलोकित करने और हमारे सामाजिक जीवन को अधिक न्यायपूर्ण और भ्रातृत्वपूर्ण बनने में योगदान देता है। श्रोताओं, कलीसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा हमें विश्वास के केंद्र बिंदु में लाती है। ईश्वर का सजीव रहस्य जो हमारे लिए यीशु ख्रिस्त में प्रकट होता है, जो एकता में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक प्रेमपूर्ण संबंध में संयुक्त हैं। यह हमारे लिए उपहार स्वरूप प्रकट होता है और जिसे वे दुनिया के संग साझा करते हैं। जैसे कि धर्म सभा हमें याद दिलाती है, मानव अपने में ईश्वर के संग एकता में रहने हेतु बुलाया गया है और वे निष्ठा में अपने को देते हुए अपने सच्चे स्वरूप की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनकी बुलाहट की गहराई को हम त्रित्वमय ईश्वर के प्रेमपूर्ण आयाम में प्रवेश और साझा करने में पाते हैं। श्रोताओं, यदि ईश्वर का रहस्य प्रेम के रूप में है, जो सामाजिक शिक्षा का स्रोत है, तो हम उसके ठोस अभिव्यक्ति को यीशु ख्रिस्त के चेहरे में पाते हैं, जहां शब्द ने शरीर धारण किया, मानव बनने के द्वारा ईश्वर का पुत्र इतिहास में प्रवेश करते और मानव शरीर को धारण करते हुए अपने संग उस प्रेम को लेकर आते हैं जो हमें पिता और पवित्र आत्मा ईश्वर से संयुक्त करता है। उनमें हम मानवता के रहस्य को सचमुच में स्पष्ट पाते हैं, क्योंकि उनकी मानवता अपने में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। यह दूसरे के लिए खुली है, जो अपने में स्वस्थ और सुंदर संबंधों को स्थापित करती और निष्ठा में अपने को पूर्ण रूपेण निछावर करती है। वे जो उनमें विश्वास करते हैं, वे अपने को नवीनता के महान कार्य में संलग्न पाते हैं, जो उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य से शुरू होता है, और वे ईश्वरीय राज्य के निर्माण में सहयोग करते हैं। वे एक ईश्वरीय संतान की भांति सभी नर और नारियों को अपने भाई और बहन की भांति आलिंगन करते हैं। इस भांति सुसमाचार की घोषणा और ख्रिस्तीय जीवन पवित्र आत्मा के कार्य में निर्देशित दुनिया में सामाजिक परिणाम को लाने की चाह रखता है। श्रोताओं, ख्रिस्तीयता के केंद्र बिंदु में मानव जीवन की समझ को हम धर्म ग्रंथ में पाते हैं, जहां नर और नारी त्रित्व में ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। संबंध में प्रवेश करने हेतु बनाया गया हर मानव ईश्वर की योजना और चाहत के अनुरूप उनके संग, दूसरों के संग और सृष्टि के संग एकता में प्रवेश करता है। मानव सम्मान व्यक्ति की योग्यताओं, धन या जीवन की परिस्थिति में निर्भर नहीं करता है, ना ही सही या गलत के चुनाव में, बल्कि यह हमारे लिए एक उपहार है जो हमारे लिए सर्वप्रथम आता और हर व्यक्ति को अपने से परे ले चलता है, जहां हम ईश्वर के शर्तहीन प्रेम को अक्षय निधि के रूप में अपने लिए पाते हैं। यही कारण है कि मानव सदैव कलिस्य के लिए मार्ग और मानव के समग्र विकास के हर मार्ग का केंद्र बिंदु होता है। श्रोताओं, संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने कहा है कि मानव का सम्मान और उसकी अद्वितीयता और अंतरात्मा की यात्रा का सम्मान करने की यह बढ़ी हुई समझ निश्चित रूप से आधुनिक संस्कृति और सकारात्मक उपलब्धियों में से एक है। इस वाक्य को हम वैटिकन द्वितीय की पंक्तियों का अनुसरण करता हुआ पाते हैं, जो सभी लोगों की महान गरिमा भौतिक वस्तुओं पर उनकी श्रेष्ठता और उनके सार्वभौमिक व उल्लंघन न किए जाने वाले अधिकारों और कर्तव्यों को मान्यता प्रदान करती है। हमारे लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मानव सम्मान की प्रशंसा में वृद्धि आज की दुनिया में नए विचारधाराओं या बहुत शक्तिशाली हितों के दबाव से ओझल नहीं होती हो। इन विचारधाराओं के बीच में मैं उस विचारधारा को विशेष रूप से खतरनाक मानता हूँ जो यह मानती है कि हर व्यक्ति को अपनी अहमियत खुद साबित करनी चाहिए या उसे सही ठहराना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग ज्यादा कुशल या असरदार हैं, उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने में परिणाम हासिल करने के साधन मात्र बनकर रह जाते हैं, एक ऐसा माध्यम जिसका उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है, और वे इस भांति उन्हें अपने में एक सही साधन स्वरूप नहीं देखा जाता है, उनका उपयोग कभी नहीं किया जाता है। लोगों का मूल्य यद्यपि इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उन्होंने क्या हासिल किया है या उन्होंने किन चीजों को प्राप्त किया है, हम उन अधिकारों को देखते हैं जो हर किसी के लिए लागू होता है, क्योंकि वे मानव हैं और कोई भी मानवीय शक्ति उन्हें जायज तौर पर नाकार नहीं सकती या मनमाने ढंग से सीमित ही कर सकती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापालियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरित पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने गजा शहर में पौत्र परिवार काथी कलीसिया के पल्ली पुरोहित को शोक संदेश भेजा है, जहां इसराइली हमले में 2 ख्रिस्ती महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पोप लियो 14वें ने दुख जताया है और गजा के ख्रिस्ती समुदाय को अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिया है। इसराइली हवाई हमला में 2 ऑर्थोडॉक्स महिलाओं समेत 5 आम लोगों की मौत हो गई। यह हमला शनिवार 3 अक्टूबर की सुबह पश्चिमी गजा शहर के व्रीमल इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग पर हुआ, जिसमें कई दूसरे लोग घायल हो गए। मारे गए लोगों में मैसा खादर इब्राहिम अबू दाऊद और उनकी बेटी मेरी हाफिज मिशेल नजर शामिल हैं। उन्हें हाल ही में एक नई पनाह मिली थी और वे अपना जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही थीं। गजा में पौत्र परिवार गिरजाघर के पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली को भेजे एक संदेश में पोप ने पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पोप ने लिखा, मैसा और मेरी की मौत की दर्दनाक खबर सुनने के बाद से मैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए और गजा के पूरे समुदाय के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे प्रभु, कब तक? पोप ने कहा, पल्ली और इतने सारे लोगों के साथ रहने के लिए धन्यवाद जो शांति से रहना चाहते हैं। आशीर्वाद और मेरा प्यार भरा आलिंगन। अलग से यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तित सपित साबाला ने पुरोहितों और धर्म प्रांत की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और बेगुनाह लोगों की मौत की निंदा की। मृतकों का अंतिम संस्कार शनिवार को गजा शहर के संत पोरफिरियोस गिरजाघर में संपन्न हुआ, जहां ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष विकर मेट्रोपॉलिटन अलेक्सियोस ने उनकी अनंत शांति के लिए प्रार्थना की। अलशिफा अस्पताल के मेडिकल स्रोत के अनुसार हमले में घायल हुए लोगों की हालत गंभीर है। इसराइली सेना ने कहा कि हमले में हमास के कमांडर सेंटर या लीडर को टारगेट किया गया था। इस बीच फादर रोमानेल्ली और मिशनरी ऑफ चैरिटी के नेतृत्व में स्थानीय कलीसिया उन सैकड़ों बेघर लोगों की मदद कर रही है जिनके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। 7 अक्टूबर की सालगिरह से पहले इटालियन अखबार ला रिपब्लिका से बात करते हुए कार्डिनल पिज़ाबाला ने कहा कि इसराइली और फिलिस्तीनी दोनों ही इस दिन की घटना से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, हम अभी उस दिन से आगे नहीं बढ़े हैं। दोनों लोग, इसराइली और फिलिस्तीनी, इस गहरे अनसुलझे आघात में फंसे हुए हैं। हालांकि लड़ाई की तेजी कम हो गई है, लेकिन कार्डिनल ने चेतावनी दी कि रोजमर्रा की जिंदगी और इंसानी हालत और भी खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा, पुनर्निर्माण शुरू नहीं हुआ है, रहने के हालात बेहतर नहीं हुए हैं, असल में कुछ मामलों में वे और भी खराब हो गए हैं। सर्दी आने के साथ कार्डिनल पिज़ाबाला ने बेघर परिवारों के लिए खास चिंता जताई। उन्होंने कहा, टेंट में रहने वाले सभी लोगों के लिए बारिश एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इन मुश्किलों के बीच गजा के पैरिश स्कूल के फिर से खुलने से समुदाय को उम्मीद की एक निशानी मिली है। पोप लियो 14वें ने युग की मांग को देखते हुए कहा है कि हमारे युग में ऐसे पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता है जिनमें अच्छा काम करने की हिम्मत हो। ऐसे समय में जब दुनिया के हर कोने से युद्ध, हिंसा, स्वार्थ और उससे पीड़ित लोगों की आवाजें गूंज रही हैं, पोप ने 5 अक्टूबर के एक संदेश में लिखा, एक शहादत उन लोगों की होती है जो एक पल में अपनी जान दे देते हैं और एक और छिपी हुई शहादत उन लोगों की होती है जो दिन प्रतिदिन अपना जीवन देते हैं। सभी ख्रिस्तों को यही करने के लिए कहा गया है, हर दिन प्यार से अपना जीवन अर्पित करें। पोप ने आगे इस बात को भी उजागर किया कि अच्छा काम करने से हमेशा पहचान नहीं मिलती और अक्सर इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन यह उदारता का रोज दिन का साहस है। यीशु के साथ दोस्ती हमें इस तरह जीने की ताकत देती है। पोप लियो 14वें ने यू कैट लव फॉर एवर किताब के नए संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है। यह किताब युवाओं को कार्तिक धर्म के आलोक में प्यार, रिश्तों और शादी पर चिंतन हेतु मदद करेगी। संत पापा लिखते हैं, प्यारे युवा दोस्तों, आपका दिल प्यार के लिए तरसता है, एक ऐसा प्यार जो गहरा, त्याग करने वाला और हमेशा बना रहने वाला हो। यह चाहत कोई इत्तेफाक नहीं है, यह इस बात की निशानी है कि आप प्यार के लिए बने हैं। संत अगस्तीन कहते हैं, हे ईश्वर, हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक कि वह तुझ में विश्राम ना कर ले।
इसमें उन्होंने उस दिव्य प्यार की चाहत जाहिर की है जो ईश्वर सच में हमारी आत्माओं में डालते हैं जब हम उनके साथ जुड़ते हैं। जी हाँ, ईश्वर खुद मानवीय प्यार में उपस्थित हो सकते हैं और उससे बदल सकते हैं, फिर भी वे हमें वैसा ही प्यार करने की काबिलियत देते हैं जैसा वे करते हैं सेवा में, दिल खोलकर खुद को देने में और जब जरूरी हो माफ़ करने में, क्योंकि ईश्वर प्यार है और उन्होंने आपको प्यार करने के लिए बनाया है। उन्हें और आपके साथ के लोगों को मानव प्यार के सभी रूपों में एक पुरुष और एक महिला के बीच का प्यार एक खास जगह रखता है, यह दिल पर तीर की तरह वार करता है बहुत तीव्रता से और तेजी से। फिर भी सच्चा प्यार यहीं समाप्त नहीं होता, यह सिर्फ कुछ देर के लिए उभरने वाली भावना नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर है। यह दूसरे के लिए एक गहरा समर्पण है, एक फैसला है, एक सफर है और जीवन भर का वादा है। प्रेम तभी सच्चा होता और हमेशा बना रह सकता है जब यह ईश्वर की हमेशा रहने वाली खूबसूरती को दिखाता है। ईश्वर जो प्रेम है, मजबूत और अच्छे रिश्ते आपसी भरोसे पर इस हमेशा पर बनते हैं जो पारिवारिक जीवन और धार्मिक समर्पण के हर कार्य का केंद्र है। शादी ईश्वर के रहस्य के बारे बताती है। जब एक पुरुष और एक नारी प्यार में एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित होते तो ईश्वर उनके बीच निवास करते हैं। उनकी वफादारी, उनकी माफी, अच्छाई के लिए उनकी रोज दिन की कोशिश मसीह की अपनी कलीसिया के प्यार की झलक है। यह शायद एक रोमांटिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात लगे, लेकिन यह असलियत के बारे में एक गहरी सच्चाई है। उनमें जो एक हैं, हम एक हैं। पोप ने कहा, प्यारे युवाओं, ईश्वर आपको एक महान प्यार के लिए बुला रहे हैं। इसकी गहराई से नहीं डरें, क्योंकि जिस प्यार के लिए आपको बुलाया गया है वह मुश्किलों को पार करने के लिए काफी मजबूत है और इतना बड़ा है कि आपकी पूरी जिंदगी आपको सहारा दे सकता है। यह पूर्ण नहीं है, लेकिन यह विश्वास की रोशनी में बढ़ता है। सच्चा प्यार ईश्वर का वरदान है और हम इससे खुद नहीं बना सकते। जहां इंसानी प्यार अक्सर मतलबी इच्छाओं से भरा होता है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर का प्यार निस्वार्थ, सहनशील, धैर्यशील होता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापलियो 14वें का यह विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। श्रोताओं, मैनिफिका ह्यूमानिटास का दूसरा अध्याय हमारे लिए सामाजिक धर्म शिक्षा के मूलभूत आधार और सिद्धांतों की चर्चा करता है। कलीसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा अपने में एक सजीव सच्चाई है जो इतिहास, संस्कृति और विज्ञानों से संवाद करती है। वहीं हम इसे अपरिवर्तनीय सच्चाइयों से भरा पाते हैं। इस यही कारण है यह हमारे लिए ज्ञान का एक स्वरूप है जो सामाजिक जीवन में विश्वासियों को दिशा निर्देशित करने की क्षमता रखती है। इस दूसरे अध्याय में संत पापा लियो 14वें कहते हैं कि मैं सामाजिक धर्म सिद्धांत के मूलभूत बातों और धर्म सिद्धांत पर ध्यान देना चाहूंगा जो हमें हमारे समय की नई चीजों को अनुवाद करने में मदद करेगी, विशेष रूप से वे चीजें जो गहरे रूप में मानवीय सम्मान से जुड़ी हुई हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में मानव की सुरक्षा के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि आज हमें पुनः जन सामान्य के हितों, वस्तुओं तथा वैश्विक मूल्य पूरकता, एकता और सामाजिक न्याय पर चिंतन करने की जरूरत है। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि इन सारे सिद्धांतों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध इस बात की मांग करती है कि हम उन पर सामूहिक रूप में चिंतन करें, जिससे हमारे लिए यह स्पष्ट हो कि वे कैसे एक दूसरे से संयुक्त हैं और कैसे एक दूसरे के पूरक बनते हैं। संत पापा लियो लिखते हैं कि इन चिंतनों को प्रस्तुत करने में मैं इस बात की आशा करता हूँ कि सर्वप्रथम यह लोक धर्मियों और ख्याति प्राप्त लोगों को इस बात के लिए मदद करे कि वे उपयुक्त सिद्धांतों का उपयोग अपने दैनिक जीवन, पारिवारिक संबंधों, कार्य और सामाजिक संदर्भ में करते हों। इस भांति वे अपने को ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होने देंगे जिन्हें वे अपने जीवन की ठोस घटनाओं में देखते हैं। इसके साथ ही मैं शिक्षण संस्थानों और महाविद्यालयों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि वे इन सिद्धांतों को नई गति दें और उन्हें इस भांति उपयोग में लाएं कि वे डिजिटल क्रांति से निपटने में प्रासंगिक और प्रभावी बने। इस तरह धार्मिक और दार्शनिक खोज कलीसिया की प्रेरितिक यात्रा को और आगे बढ़ाने और उसका समर्थन करने में मदद करेगा। साथ ही यह धर्म सिद्धांत के कार्यों में भी योगदान देगा जो विश्वासियों की अंतरात्मा को आलोकित करने और हमारे सामाजिक जीवन को अधिक न्यायपूर्ण और भ्रातृत्वपूर्ण बनने में योगदान देता है। श्रोताओं, कलीसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा हमें विश्वास के केंद्र बिंदु में लाती है। ईश्वर का सजीव रहस्य जो हमारे लिए यीशु ख्रिस्त में प्रकट होता है, जो एकता में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक प्रेमपूर्ण संबंध में संयुक्त हैं। यह हमारे लिए उपहार स्वरूप प्रकट होता है और जिसे वे दुनिया के संग साझा करते हैं। जैसे कि धर्म सभा हमें याद दिलाती है, मानव अपने में ईश्वर के संग एकता में रहने हेतु बुलाया गया है और वे निष्ठा में अपने को देते हुए अपने सच्चे स्वरूप की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनकी बुलाहट की गहराई को हम त्रित्वमय ईश्वर के प्रेमपूर्ण आयाम में प्रवेश और साझा करने में पाते हैं। श्रोताओं, यदि ईश्वर का रहस्य प्रेम के रूप में है, जो सामाजिक शिक्षा का स्रोत है, तो हम उसके ठोस अभिव्यक्ति को यीशु ख्रिस्त के चेहरे में पाते हैं, जहां शब्द ने शरीर धारण किया, मानव बनने के द्वारा ईश्वर का पुत्र इतिहास में प्रवेश करते और मानव शरीर को धारण करते हुए अपने संग उस प्रेम को लेकर आते हैं जो हमें पिता और पवित्र आत्मा ईश्वर से संयुक्त करता है। उनमें हम मानवता के रहस्य को सचमुच में स्पष्ट पाते हैं, क्योंकि उनकी मानवता अपने में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। यह दूसरे के लिए खुली है, जो अपने में स्वस्थ और सुंदर संबंधों को स्थापित करती और निष्ठा में अपने को पूर्ण रूपेण निछावर करती है। वे जो उनमें विश्वास करते हैं, वे अपने को नवीनता के महान कार्य में संलग्न पाते हैं, जो उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य से शुरू होता है, और वे ईश्वरीय राज्य के निर्माण में सहयोग करते हैं। वे एक ईश्वरीय संतान की भांति सभी नर और नारियों को अपने भाई और बहन की भांति आलिंगन करते हैं। इस भांति सुसमाचार की घोषणा और ख्रिस्तीय जीवन पवित्र आत्मा के कार्य में निर्देशित दुनिया में सामाजिक परिणाम को लाने की चाह रखता है। श्रोताओं, ख्रिस्तीयता के केंद्र बिंदु में मानव जीवन की समझ को हम धर्म ग्रंथ में पाते हैं, जहां नर और नारी त्रित्व में ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। संबंध में प्रवेश करने हेतु बनाया गया हर मानव ईश्वर की योजना और चाहत के अनुरूप उनके संग, दूसरों के संग और सृष्टि के संग एकता में प्रवेश करता है। मानव सम्मान व्यक्ति की योग्यताओं, धन या जीवन की परिस्थिति में निर्भर नहीं करता है, ना ही सही या गलत के चुनाव में, बल्कि यह हमारे लिए एक उपहार है जो हमारे लिए सर्वप्रथम आता और हर व्यक्ति को अपने से परे ले चलता है, जहां हम ईश्वर के शर्तहीन प्रेम को अक्षय निधि के रूप में अपने लिए पाते हैं। यही कारण है कि मानव सदैव कलीसिया के लिए मार्ग और मानव के समग्र विकास के हर मार्ग का केंद्र बिंदु होता है। श्रोताओं, संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने कहा है कि मानव का सम्मान और उसकी अद्वितीयता और अंतरात्मा की यात्रा का सम्मान करने की यह बढ़ी हुई समझ निश्चित रूप से आधुनिक संस्कृति और सकारात्मक उपलब्धियों में से एक है। इस वाक्य को हम वैटिकन द्वितीय की पंक्तियों का अनुसरण करता हुआ पाते हैं, जो सभी लोगों की महान गरिमा भौतिक वस्तुओं पर उनकी श्रेष्ठता और उनके सार्वभौमिक व उल्लंघन न किए जाने वाले अधिकारों और कर्तव्यों को मान्यता प्रदान करती है। हमारे लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मानव सम्मान की प्रशंसा में वृद्धि आज की दुनिया में नए विचारधाराओं या बहुत शक्तिशाली हितों के दबाव से ओझल नहीं होती हो। इन विचारधाराओं के बीच में मैं उस विचारधारा को विशेष रूप से खतरनाक मानता हूँ, जो यह मानती है कि हर व्यक्ति को अपनी अहमियत खुद साबित करनी चाहिए या उसे सही ठहराना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग ज्यादा कुशल या असरदार हैं, उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने में परिणाम हासिल करने के साधन मात्र बनकर रह जाते हैं, एक ऐसा माध्यम जिसका उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है, और वे इस भांति उन्हें अपने में एक सही साधन स्वरूप नहीं देखा जाता है, उनका उपयोग कभी नहीं किया जाता है। लोगों का मूल्य यद्यपि इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उन्होंने क्या हासिल किया है या उन्होंने किन चीजों को प्राप्त किया है, हम उन अधिकारों को देखते हैं जो हर किसी के लिए लागू होता है, क्योंकि वे मानव हैं और कोई भी मानवीय शक्ति उन्हें जायज तौर पर नाकार नहीं सकती या मनमाने ढंग से सीमित ही कर सकती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापालियो चौदहवें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने गजा शहर में पौत्र परिवार कार्तिक कलीसिया के पल्ली पुरोहित को शोक संदेश भेजा है, जहां इसराइली हमले में 2 ख्रिस्त महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पोप लियो 14वें ने दुख जताया है और गजा के ख्रिस्त समुदाय को अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिया है। इसराइली हवाई हमला में 2 ऑर्थोडॉक्स महिलाओं समेत 5 आम लोगों की मौत हो गई। यह हमला शनिवार 3 अक्टूबर की सुबह पश्चिमी गजा शहर के व्रीमल इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग पर हुआ, जिसमें कई दूसरे लोग घायल हो गए। मारे गए लोगों में मैसा खादर इब्राहिम अबू दाऊद और उनकी बेटी मेरी हाफिज मिशेल नजर शामिल हैं। उन्हें हाल ही में एक नई पनाह मिली थी और वे अपना जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही थीं। गजा में पौत्र परिवार गिरजाघर के पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली को भेजे एक संदेश में पोप ने पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पोप ने लिखा, मैसा और मेरी की मौत की दर्दनाक खबर सुनने के बाद से मैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए और गजा के पूरे समुदाय के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे प्रभु, कब तक? पोप ने कहा, पल्ली और इतने सारे लोगों के साथ रहने के लिए धन्यवाद जो शांति से रहना चाहते हैं। आशीर्वाद और मेरा प्यार भरा आलिंगन। अलग से यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्मदोष कार्डिनल पियर बत्तीत सपित्सा बाला ने पुरोहितों और धर्म प्रांत की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और बेगुनाह लोगों की मौत की निंदा की। मृतकों का अंतिम संस्कार शनिवार को गजा शहर के संत पोरफिरियोस गिरजाघर में संपन्न हुआ, जहां ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष विकर मेट्रोपॉलिटन अलेक्सियोस ने उनकी अनंत शांति के लिए प्रार्थना की। अलशिफा अस्पताल के मेडिकल स्रोत के अनुसार हमले में घायल हुए लोगों की हालत गंभीर है। इसराइली सेना ने कहा कि हमले में हमास के कमांडर सेंटर या लीडर को टारगेट किया गया था। इस बीच फादर रोमानेल्ली और मिशनरी ऑफ चैरिटी के नेतृत्व में स्थानीय कलीसिया उन सैकड़ों बेघर लोगों की मदद कर रही है जिनके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। 7 अक्टूबर की सालगिरह से पहले इटालियन अखबार ला रिपब्लिका से बात करते हुए कार्डिनल पित्सा बाला ने कहा कि इसराइली और फिलिस्तीनी दोनों ही इस दिन की घटना से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, हम अभी उस दिन से आगे नहीं बढ़े हैं। दोनों लोग, इसराइली और फिलिस्तीनी, इस गहरे अनसुलझे आघात में फंसे हुए हैं। हालांकि लड़ाई की तेजी कम हो गई है, लेकिन कार्डिनल ने चेतावनी दी कि रोजमर्रा की जिंदगी और इंसानी हालत और भी खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा, पुनर्निर्माण शुरू नहीं हुआ है, रहने के हालात बेहतर नहीं हुए हैं, असल में कुछ मामलों में वे और भी खराब हो गए हैं। सर्दी आने के साथ कार्डिनल पित्सा बाला ने बेघर परिवारों के लिए खास चिंता जताई। उन्होंने कहा, टेंट में रहने वाले सभी लोगों के लिए बारिश एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इन मुश्किलों के बीच गजा के पैरिश स्कूल के फिर से खुलने से समुदाय को उम्मीद की एक निशानी मिली है। पोप लियो 14वें ने युग की मांग को देखते हुए कहा है कि हमारे युग में ऐसे पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता है जिनमें अच्छा काम करने की हिम्मत हो। ऐसे समय में जब दुनिया के हर कोने से युद्ध, हिंसा, स्वार्थ और उससे पीड़ित लोगों की आवाजें गूंज रही हैं, पोप ने 5 अक्टूबर के एक संदेश में लिखा, एक शहादत उन लोगों की होती है जो एक पल में अपनी जान दे देते हैं और एक और छिपी हुई शहादत उन लोगों की होती है जो दिन प्रतिदिन अपना जीवन देते हैं। सभी ख्रिस्तों को यही करने के लिए कहा गया है, हर दिन प्यार से अपना जीवन अर्पित करें। पोप ने आगे इस बात को भी उजागर किया कि अच्छा काम करने से हमेशा पहचान नहीं मिलती और अक्सर इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन यह उदारता का रोज दिन का साहस है। यीशु के साथ दोस्ती हमें इस तरह जीने की ताकत देती है। पोप लियो 14वें ने यू कैट लव फॉर एवर किताब के नए संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है। यह किताब युवाओं को कार्तिक धर्म के आलोक में प्यार, रिश्तों और शादी पर चिंतन हेतु मदद करेगी। संत पापा लिखते हैं, प्यारे युवा दोस्तों, आपका दिल प्यार के लिए तरसता है, एक ऐसा प्यार जो गहरा, त्याग करने वाला और हमेशा बना रहने वाला हो। यह चाहत कोई इत्तेफाक नहीं है, यह इस बात की निशानी है कि आप प्यार के लिए बने हैं। संत अगस्टीन कहते हैं, हे ईश्वर, हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक कि वह तुझ में विश्राम ना कर ले।
इसमें उन्होंने उस दिव्य प्यार की चाहत जाहिर की है जो ईश्वर सच में हमारी आत्माओं में डालते हैं जब हम उनके साथ जुड़ते हैं। जी हाँ, ईश्वर खुद मानवीय प्यार में उपस्थित हो सकते हैं और उससे बदल सकते हैं, फिर भी वे हमें वैसा ही प्यार करने की काबिलियत देते हैं जैसा वे करते हैं सेवा में, दिल खोलकर खुद को देने में और जब जरूरी हो माफ़ करने में, क्योंकि ईश्वर प्यार है और उन्होंने आपको प्यार करने के लिए बनाया है। उन्हें और आपके साथ के लोगों को मानव प्यार के सभी रूपों में एक पुरुष और एक महिला के बीच का प्यार एक खास जगह रखता है, यह दिल पर तीर की तरह वार करता है बहुत तीव्रता से और तेजी से। फिर भी सच्चा प्यार यहीं समाप्त नहीं होता, यह सिर्फ कुछ देर के लिए उभरने वाली भावना नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर है। यह दूसरे के लिए एक गहरा समर्पण है, एक फैसला है, एक सफर है और जीवन भर का वादा है। प्रेम तभी सच्चा होता और हमेशा बना रह सकता है जब यह ईश्वर की हमेशा रहने वाली खूबसूरती को दिखाता है। ईश्वर जो प्रेम है, मजबूत और अच्छे रिश्ते आपसी भरोसे पर इस हमेशा पर बनते हैं जो पारिवारिक जीवन और धार्मिक समर्पण के हर कार्य का केंद्र है। शादी ईश्वर के रहस्य के बारे बताती है। जब एक पुरुष और एक नारी प्यार में एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित होते तो ईश्वर उनके बीच निवास करते हैं। उनकी वफादारी, उनकी माफ़ी, अच्छाई के लिए उनकी रोज दिन की कोशिश मसीह की अपनी कलीसिया के प्यार की झलक है। यह शायद एक रोमांटिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात लगे, लेकिन यह असलियत के बारे में एक गहरी सच्चाई है। उनमें जो एक हैं, हम एक हैं। पोप ने कहा, प्यारे युवाओं, ईश्वर आपको एक महान प्यार के लिए बुला रहे हैं। इसकी गहराई से नहीं डरें, क्योंकि जिस प्यार के लिए आपको बुलाया गया है वह मुश्किलों को पार करने के लिए काफ़ी मजबूत है और इतना बड़ा है कि आपकी पूरी जिंदगी आपको सहारा दे सकता है। यह पूर्ण नहीं है, लेकिन यह विश्वास की रोशनी में बढ़ता है। सच्चा प्यार ईश्वर का वरदान है और हम इससे खुद नहीं बना सकते। जहां इंसानी प्यार अक्सर मतलबी इच्छाओं से भरा होता है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर का प्यार निस्वार्थ, सहनशील, धैर्यशील होता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: अमृत को कन्याएं करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
3: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्हैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे

0: नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte.
1: भाइयो एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। वैटिकन द्वितीय के धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस पर हम अपना चिंतन जारी रखते हुए आज इसके चौथे अध्याय पर विचार करेंगे, जो समकालीन दुनिया में कलीसिया की प्रेरिताई को समर्पित है। सर्वप्रथम धर्म सभा हमें इस बात की याद दिलाती है कि कलीसिया अपने में दुनिया के ऊपर या उसके बगल नहीं है, बल्कि उसमें कलमित है। संत अगुस्टिन ने इसे मोंडस रिकॉन्सिलियातुस एक्लेसिया रेखांकित किया। कलीसिया वह दुनिया है जिसका मेल मिलाप ईश्वर से पहले हो गया है। हम सभी इस पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों की भांति हैं, और जो दुनिया की क्षण भंगुरता और सुंदरता को अपने में साझा करते हैं। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि जिस तरह ईश्वर का पुत्र शरीर धारण करते हुए दुनिया को जीवन देने और पिता से मेल कराने आई, उसी भांति कलीसिया दुनिया में ईश्वर के देह धारण की निशानी स्वरूप निवास करती है, जिससे वह उनकी योजना को प्रकट कर सके, जहां हम सभी ईश्वर की संतान एक वृहद मानव परिवार का अंग होने हेतु बुलाए गए हैं। यही कारण है कलीसिया लोगों और संस्कृतियों के मध्य इतिहास में यात्रा करती है, और लोगों के जीवन में यह मिलन उसे इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप में समझने को मदद करती है कि उसकी प्रेरिताई का दायरा ऐतिहासिक है, जिसमें इस बात की जिम्मेदारी भी शामिल है कि वह सामाजिक संबंधों का निर्माण किस तरह से करती है। संत पापा ने कहा,
2: La prima missione della chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
1: कलीसिया की प्रथम प्रेरिताई लोगों को जीवन के गहरे सवालों के प्रति सतर्क कराना है, जो हमारे जीवन की उत्पत्ति और उसके लक्ष्य से जुड़ी है। इसके साथ ही यह प्रेम और दुखों के अर्थ को समझना है। हर हाल में लाभ कमाने की सोच और सूचनाओं की हेरा फेरी ऐसी जीवन शैली अपनाने को बहुत ज्यादा दबाव डालती है, जो सिर्फ भौतिक चीजों के उपयोग पर केंद्रित हो, लेकिन हमारा हृदय तो ऊपर की ओर देखने के लिए बनाया गया है। संत पापा ने कहा, धर्म सभा के आचार्य हमें इस बात की भी याद दिलाते हैं कि कलीसिया की प्रेरिताई अपने में इस बात की भी परिपूर्णता है, जहां वह इस पृथ्वी रूपी शहर का निर्माण करने में सहयोग करती है, यद्यपि उसके कार्य करने के तरीके और लक्ष्य अपने में मुख्य रूप से एक राजनीति स्तर के नहीं हैं, बल्कि वे विश्वास और प्रेम का साक्ष्य देने में है, जो न्याय, शांति और भ्रातृत्व के प्रति निष्ठा में बने रहना है। ख्रीस्त की आराधना करते हुए जो अपने में धर्मी हैं, जो अधर्मियों के लिए मरे, विश्वासी कमजोर और गरीबों के शोषण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ना ही आश्रित और अन्यायपूर्ण संरचनाओं को जिसका निर्माण किया जाता और उन्हें बनाए रखने की कोशिश की जाती है। कलीसिया की धर्म विधि ख्रिस्तियों के कार्यों का दिशा निर्देशन करती है जो उन नेक हृदय लोगों के साथ सहयोग करते हैं जो जनहित की चाह रखते हैं। अतः कलीसिया की उससे बड़ी और कोई इच्छा नहीं है कि वह सबों के हित का ख्याल करे। वह किसी भी ऐसी सरकार के तहत खुद को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके जो व्यक्ति और परिवार के बुनियादी अधिकारों और जन सामान्य की जरूरतों को मान्यता देती हो। संत पापा लियो ने कहा कि सुसमाचार की प्रेरिताई को प्रभावकारी ढंग से पूरा करने हेतु हर बपतिस्मा प्राप्त के लिए यह जरूरी है कि वह पवित्र आत्मा की कृपा में निष्ठा में सहयोग करे जिससे उसका विश्वास सजीव हो और उसकी अभिव्यक्ति आचरण में निरंतर बनी रहे। वास्तव में जैसे कि धर्म सभा के आचार्यों ने इस बात पर बल दिया, घोषित विश्वास और रोजमर्रे की जिंदगी के बीच का फर्क हमारे समय की सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाना चाहिए। गॉडियम एट स्पेस लोक धर्मियों के लिए विशेष प्रेरिताई को अपने में समाहित करता है जो बपतिस्मा के आधार पर दुनिया को ख्रिस्त के मनोभावों और सुसमाचार की दृष्टि से साराबोर करना है। इस कार्य के लिए मुख्य परिस्थिति जिसे हम पुरोहितिक गतिविधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं निसंदेह परिवार और कार्यस्थल हैं, यद्यपि यह जीवन के हर क्षेत्र को अपने में समाहित करता है। संत पापा लियो ने कहा कि अंततः कलीसिया सदैव उन बातों के प्रति सजग है जो समाज में घटित और विकसित हो रही हैं।
2: È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione.
1: यह सारी ईश प्रजा का कर्तव्य है, विशेषकर पुरोहितों और ईश शास्त्रियों का, कि वे इस बात के संबंध में आत्म निरीक्षण करें कि वे कौन सी बातें हैं जो हमारे समय में विचारणीय हैं, और इस संदर्भ में उन्हें चाहिए कि वे ईश वचन और कलीसिया की परंपरा को ध्यान में रखें। यह हमसे संतुलित दिमागी स्थिति की मांग करती है जहां हम दुनिया को सकारात्मक ज्योति में देखते हैं और उसे सुसमाचार संदेश के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में ख्रिस्तीय धर्म को आकर्षक बनाने का तरीका निश्चित रूप में इसके संदेश को हल्का करना या इसकी मांगों को नरमी में देखना नहीं है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि जैसे कि कलीसिया इतिहास के संग यात्राएं करती है, कलीसिया का एकमात्र लक्ष्य है कि वह ईश्वर के राज्य की स्थापना करे और सारी मानवता के लिए मुक्ति को लाए। वह व्यक्तिगत पवित्रता और भ्रातृत्व प्रेम में बने रहते हुए इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। संत पापा पॉल छाटवे ने इसके संबंध में लिखा है, पवित्रता के इस चिन्ह बिना हमारे वचनों से वर्तमान मानव हृदय का स्पर्श करना कठिन होगा। यह हमारे लिए व्यर्थ और निष्फल कार्य की जोखिम होगी। अतः आइए हम पवित्र आत्मा के कार्य हेतु अपने को खुला रखें। वे हमें पवित्रता और करुणा में जीवन जीने को मदद करें जिससे दुनिया विश्वास करे और आशा में बनी रहे। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें 25 से 27 अक्टूबर को अंतर धार्मिक शांति प्रार्थना की 40वीं वार्षिक सभा में भाग लेंगे, जो असीसी में आयोजित है और जिसकी शुरुआत संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने की है। 40 साल पहले 27 अक्टूबर 1986 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने मध्य इटली के असीसी शहर में शांति के लिए ऐतिहासिक विश्व प्रार्थना दिवस में भाग लिया था। इतिहास में पहली बार पोप ने दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को शांति के लिए एक साथ प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया था। उस सभा से प्रेरित होने वालों में संत इजिदियो समुदाय भी है, जो एक कैथोलिक लोकधर्मी संगठन है और जो तब से हर साल पूरे यूरोप एवं उसके बाहर असीसी की आत्मा के नाम से प्रचलित इस सभा को बढ़ावा दे रहा है। इस साल के कार्यक्रम में पोप लियो 14वें भी शामिल होंगे। स्थानीय धर्माध्यक्ष फेलिचे एक्रोका ने कहा, हम संत पिता के असीसी लौटने से सचमुच बहुत खुश हैं। हमें पक्का यकीन है कि पोप की उपस्थिति बाकी सभी धार्मिक नेताओं के साथ हर तरह की हिंसा के खिलाफ हमारी साझा यात्रा को मजबूत कर सकेगी। 2026 की प्रार्थना सभा को सोमवार को संचार विभाग के मुख्यालय में पेश किया गया। कार्यक्रम को संत इजिदियो समुदाय के अध्यक्ष मार्को इम्पालियाजो ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बतलाया, असीसी में अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत के लिए एक नया एवं रचनात्मक नजरिया उत्पन्न हुआ है। इम्पालियाजो ने कहा, आज दुनिया बहुत डरी हुई, डरावनी और बिखरी हुई है, राष्ट्रवाद एवं नस्लवाद के शिकार है, जिससे पुनः एक बार जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर दुनिया में आध्यात्मिक एकता नहीं है तो पुरुषों और महिलाओं के लिए एक होना और खुद को सबका भाई बहन समझना मुश्किल होगा, जैसा कि पोप फ्रांसिस कहा करते थे। 2026 की असीसी की सभा का आदर्श वाक्य है बिना हथियार वाले एवं निरस्त्रीकृत शांति, जिससे पोप लियो के शब्दों से लिया गया है। इस कार्यक्रम में 53 देशों के धर्मों, संस्कृति और संस्थानों के कुल 384 प्रतिनिधि शामिल होंगे। संत पापा लियो 14वें कार्यक्रम के अंतिम दिन 27 अक्टूबर को असीसी में होंगे। वे महागिरजा घर में क्रिस्त समुदाय के साथ शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद इम्पालियाजो ने कहा कि संत फ्रांसिस महागिरजा घर के बाहर पोप लियो 14वें दुनिया को शांति का संदेश देंगे, जो अत्यंत जरूरी है। आम दर्शन समारोह में पोप लियो 14वें ने रोजरी माला विनती करने के अपने निमंत्रण को दोहराया, जो उन्होंने लूर्द में माता मरियम से दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की थी। खासकर अक्टूबर के महीने में पोप लियो ने बुधवार को कहा, जीवन की मुश्किलों के बीच एक सुरक्षित पनाहगार पुकारी जाने वाली माता मरियम से प्रार्थना करें, जो युद्ध से घायल दुनिया के लिए सांत्वना के स्रोत है। उन्होंने अपनी यह अपील बुधवार को दोहराई, जब कलीसिया रोजरी की माता मरियम का पर्व मनाती है। पुर्तगाली भाषी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए पोप ने ब्राजील की संरक्षिका अपरिजिदा की माता मरियम को याद किया, जिनका पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। उन्होंने कहा, मैं आपको और आपके परिवारों को उनकी ममता भरी प्रार्थना को सपोर्ट करता हूँ। हमारी माता मरियम हमेशा आप पर नजर रखें। चीनी बोलने वाले तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए पोप ने मरियम को मुश्किल और दुखद पलों में शरण एवं बल बताया। पोप लियो 14वें ने वैटिकन संग्रहालय में कला के संरक्षकों को वैटिकन की कला को बचाने में मदद करने हेतु उनके उदार सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें खुद को सुंदरता के लिए खोलने और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के तरीकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। तकनीकी के दबदबे वाले इस युग में, जिसमें दक्षता एवं लाभ को ही अक्सर प्राथमिकता दी जाती है, यह बहुत जरूरी है कि हम चिंतन की भावना को बढ़ावा दें और सुंदरता को समय एवं जगह दें। पोप ने यह बात बुधवार को उस समय कही जब वे आम दर्शन समारोह से पहले अमेरिका के लुइसियाना के वैटिकन संग्रहालय में कला के संरक्षकों से मिले। पोप ने कहा, चिंतन की भावना मानवता, खासकर युवाओं को बहुत मदद करेगी, न सिर्फ यह जानने में कि कला मानव की आत्मा की गहराई को ऊपर उठाने और दिखाने की कितनी काबिलियत रखती है और ईश्वर के प्रति हमारा खुलापन क्या है, बल्कि यह समझने में भी कि सच्ची संतुष्टि के लिए आत्मदान भी जरूरी है। उन्होंने चिंतन को सुंदरता के ईश्वर से मिलने का खूबसूरत अवसर कहा और संरक्षकों को प्रोत्साहन दिया कि वे खुद को इस सुंदरता के लिए खोलें और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के तरीकों पर विचार करें। उन्होंने आगे कहा,
कला और सुंदरता के लिए प्यार और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाकर रखने की इच्छा ही संरक्षकों को रोम लाती है। उन्होंने माना कि वे तीर्थयात्रियों के तौर पर भी रोम आते हैं और उम्मीद जताई कि प्रेरितों की कब्रों पर प्रार्थना में बिताया गया उनका समय संत पेतरुस के उत्तराधिकारी और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ उनके रिश्तों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि संरक्षक के तौर पर आपने खुद अनुभव किया होगा कि सुंदरता में इंसान के दिल की सबसे अच्छी इच्छाओं को जगाने की ताकत होती है, जो हमें खुद से आगे बुलाती और हमारी आत्माओं को ईश्वर के वरदानों की उदारता के लिए खोलती है। इस संदर्भ में उन्होंने वैटिकन म्यूजियम की कला को बनाए रखने के काम में लुइसियाना के कला संरक्षकों को उनके दिल खोलकर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बॉम्बे महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष बिशप डोमिनिक सावियो फर्नांडिस ने देश एवं देश के युवाओं के लिए प्रार्थना की एक आवश्यक अपील जारी की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं बड़े भारी दिल एवं एक अत्यंत जरूरी अपील के साथ आया हूँ। कृपया हमारे देश भारत के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें और विशेषकर हमारे युवाओं के लिए, जो न्याय एवं अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। कुछ समय से हम प्रदर्शनों को बढ़ते देख रहे हैं। छात्रों, युवाओं, जेनजी, पत्रकार, नागरिक समाज और कई आम नागरिकों का दल। इन प्रदर्शनों की शुरुआत उन चिंताओं के बीच हुई है, जैसे नीट पेपर लीक, चुनावी नियम और SIR आदि। रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम चुनावी सूची से काट दिया गया है। बहिष्कार का यह पैमाना नागरिकों में बहुत अधिक चिंता उत्पन्न कर रहा है कि क्या सभी सक्षम नागरिक वोट कर पाएंगे, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte.
1: भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। वैटिकन द्वितीय के धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस पर हम अपना चिंतन जारी रखते हुए आज इसके चौथे अध्याय पर विचार करेंगे, जो समकालीन दुनिया में कलीसिया की प्रेरिताई को समर्पित है। सर्वप्रथम धर्म सभा हमें इस बात की याद दिलाती है कि कलीसिया अपने में दुनिया के ऊपर या उसके बगल नहीं है, बल्कि उसमें कलमित है। संत अगुस्टिन ने इसे मोंडुस रिकॉन्सिलियातुस एक्लेसिया रेखांकित किया। कलीसिया वह दुनिया है जिसका मेल मिलाप ईश्वर से पहले हो गया है। हम सभी इस पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों की भांति हैं, और जो दुनिया की क्षण भंगुरता और सुंदरता को अपने में साझा करते हैं। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि जिस तरह ईश्वर का पुत्र शरीर धारण करते हुए दुनिया को जीवन देने और पिता से मेल कराने आई, उसी भांति कलीसिया दुनिया में ईश्वर के देह धारण की निशानी स्वरूप निवास करती है, जिससे वह उनकी योजना को प्रकट कर सके, जहां हम सभी ईश्वर के संतान एक वृहद मानव परिवार का अंग होने हेतु बुलाए गए हैं। यही कारण है कलीसिया लोगों और संस्कृतियों के मध्य इतिहास में यात्रा करती है, और लोगों के जीवन में यह मिलन उसे इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप में समझने को मदद करती है कि उसकी प्रेरिताई का दायरा ऐतिहासिक है, जिसमें इस बात की जिम्मेदारी भी शामिल है कि वह सामाजिक संबंधों का निर्माण किस तरह से करती है। संत पापा ने कहा,
2: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
1: कलीसिया की प्रथम प्रेरिताई लोगों को जीवन के गहरे सवालों के प्रति सतर्क कराना है, जो हमारे जीवन की उत्पत्ति और उसके लक्ष्य से जुड़ी है। इसके साथ ही यह प्रेम और दुखों के अर्थ को समझना है। हर हाल में लाभ कमाने की सोच और सूचनाओं की हेराफेरी ऐसी जीवन शैली अपनाने को बहुत ज्यादा दबाव डालती है, जो सिर्फ भौतिक चीजों के उपयोग पर केंद्रित हो, लेकिन हमारा हृदय तो ऊपर की ओर देखने के लिए बनाया गया है। संत पापा ने कहा, धर्म सभा के आचार्य हमें इस बात की भी याद दिलाते हैं कि कलीसिया की प्रेरिताई अपने में इस बात की भी परिपूर्णता है, जहां वह इस पृथ्वी रूपी शहर का निर्माण करने में सहयोग करती है, यद्यपि उसके कार्य करने के तरीके और लक्ष्य अपने में मुख्य रूप से एक राजनीति स्तर के नहीं हैं, बल्कि वे विश्वास और प्रेम का साक्ष्य देने में है, जो न्याय, शांति और भ्रातृत्व के प्रति निष्ठा में बने रहना है। ख्रीस्त की आराधना करते हुए जो अपने में धर्मी हैं, जो अधर्मियों के लिए मरे, विश्वासी कमजोर और गरीबों के शोषण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ना ही आश्रित और अन्यायपूर्ण संरचनाओं को जिसका निर्माण किया जाता और उन्हें बनाए रखने की कोशिश की जाती है। कलीसिया की धर्म विधि ख्रिस्तियों के कार्यों का दिशा निर्देशन करती है जो उन नेक हृदयी लोगों के साथ सहयोग करते हैं जो जनहित की चाह रखते हैं। अतः कलीसिया की उससे बड़ी और कोई इच्छा नहीं है कि वह सबों के हित का ख्याल करे। वह किसी भी ऐसी सरकार के तहत खुद को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके जो व्यक्ति और परिवार के बुनियादी अधिकारों और जन सामान्य की जरूरतों को मान्यता देती हो। संत पापा लियो ने कहा कि सुसमाचार की प्रेरिताई को प्रभावकारी ढंग से पूरा करने हेतु हर बपतिस्मा प्राप्त के लिए यह जरूरी है कि वह पवित्र आत्मा की कृपा में निष्ठा में सहयोग करे जिससे उसका विश्वास सजीव हो और उसकी अभिव्यक्ति आचरण में निरंतर बनी रहे। वास्तव में जैसे कि धर्म सभा के आचार्यों ने इस बात पर बल दिया, घोषित विश्वास और रोजमर्रे की जिंदगी के बीच का फर्क हमारे समय की सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाना चाहिए। गॉडियम एट स्पेस लोक धर्मियों के लिए विशेष प्रेरिताई को अपने में समाहित करता है जो बपतिस्मा के आधार पर दुनिया को ख्रिस्त के मनोभावों और सुसमाचार की दृष्टि से साराभोर करना है। इस कार्य के लिए मुख्य परिस्थिति जिसे हम पुरोहितिक गतिविधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं निसंदेह परिवार और कार्यस्थल हैं, यद्यपि यह जीवन के हर क्षेत्र को अपने में समाहित करता है। संत पापा लियो ने कहा कि अंततः कलीसिया सदैव उन बातों के प्रति सजग है जो समाज में घटित और विकसित हो रही हैं।
2: È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione.
1: यह सारी ईश प्रजा का कर्तव्य है, विशेषकर पुरोहितों और ईश शास्त्रियों का, कि वे इस बात के संबंध में आत्म निरीक्षण करें कि वे कौन सी बातें हैं जो हमारे समय में विचारणीय हैं, और इस संदर्भ में उन्हें चाहिए कि वे ईश वचन और कलीसिया की परंपरा को ध्यान में रखें। यह हमसे संतुलित दिमागी स्थिति की मांग करती है जहां हम दुनिया को सकारात्मक ज्योति में देखते हैं और उसे सुसमाचार संदेश के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में ख्रिस्तीय धर्म को आकर्षक बनाने का तरीका निश्चित रूप में इसके संदेश को हल्का करना या इसकी मांगों को नरमी में देखना नहीं है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि जैसे कि कलीसिया इतिहास के संग यात्राएं करती है, कलीसिया का एकमात्र लक्ष्य है कि वह ईश्वर के राज्य की स्थापना करे और सारी मानवता के लिए मुक्ति को लाए। वह व्यक्तिगत पवित्रता और भ्रातृत्व प्रेम में बने रहते हुए इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। संत पापा पॉल छाटवे ने इसके संबंध में लिखा है, पवित्रता के इस चिन्ह बिना हमारे वचनों से वर्तमान मानव हृदय का स्पर्श करना कठिन होगा। यह हमारे लिए व्यर्थ और निष्फल कार्य की जोखिम होगी। अतः आइए हम पवित्र आत्मा के कार्य हेतु अपने को खुला रखें। वे हमें पवित्रता और करुणा में जीवन जीने को मदद करें जिससे दुनिया विश्वास करे और आशा में बनी रहे। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें 25 से 27 अक्टूबर को अंतरधार्मिक शांति प्रार्थना की 40वीं वार्षिक सभा में भाग लेंगे, जो असीसी में आयोजित है और जिसकी शुरुआत संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने की है। 40 साल पहले 27 अक्टूबर 1986 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने मध्य इटली के असीसी शहर में शांति के लिए ऐतिहासिक विश्व प्रार्थना दिवस में भाग लिया था। इतिहास में पहली बार पोप ने दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को शांति के लिए एक साथ प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया था। उस सभा से प्रेरित होने वालों में संत इजिदियो समुदाय भी है, जो एक कैथोलिक लोक धर्म संगठन है और जो तब से हर साल पूरे यूरोप एवं उसके बाहर असीसी की आत्मा के नाम से प्रचलित इस सभा को बढ़ावा दे रहा है। इस साल के कार्यक्रम में पोप लियो 14वें भी शामिल होंगे। स्थानीय धर्माध्यक्ष फेलिचे एक्रोका ने कहा, हम संत पिता के असीसी लौटने से सचमुच बहुत खुश हैं। हमें पक्का यकीन है कि पोप की उपस्थिति बाकी सभी धार्मिक नेताओं के साथ हर तरह की हिंसा के खिलाफ हमारी साझा यात्रा को मजबूत कर सकेगी। 2026 की प्रार्थना सभा को सोमवार को संचार विभाग के मुख्यालय में पेश किया गया। कार्यक्रम को संत इजिदियो समुदाय के अध्यक्ष मार्को इम्पालियाजो ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बतलाया, असीसी में अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत के लिए एक नया एवं रचनात्मक नजरिया उत्पन्न हुआ है। इम्पालियाजो ने कहा, आज दुनिया बहुत डरी हुई, डरावनी और बिखरी हुई है। राष्ट्रवाद एवं नस्लवाद के शिकार है, जिससे पुनः एक बार जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर दुनिया में आध्यात्मिक एकता नहीं है, तो पुरुषों और महिलाओं के लिए एक होना और खुद को सबका भाई बहन समझना मुश्किल होगा, जैसा कि पोप फ्रांसिस कहा करते थे। 2026 के असीसी की सभा का आदर्श वाक्य है, बिना हथियार वाले एवं निरस्त्रीकृत शांति, जिससे पोप लियो के शब्दों से लिया गया है। इस कार्यक्रम में 53 देशों के धर्मों, संस्कृति और संस्थानों के कुल 384 प्रतिनिधि शामिल होंगे। संत पापा लियो 14वें कार्यक्रम के अंतिम दिन 27 अक्टूबर को असीसी में होंगे। वे महागिरजा घर में ख्रिस्त समुदाय के साथ शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद इम्पालियाजो ने कहा कि संत फ्रांसिस महागिरजा घर के बाहर पोप लियो 14वें दुनिया को शांति का संदेश देंगे, जो अत्यंत जरूरी है। आम दर्शन समारोह में पोप लियो 14वें ने रोजरी माला विनती करने के अपने निमंत्रण को दोहराया, जो उन्होंने लूर्द में माता मरियम से दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की थी। खासकर अक्टूबर के महीने में पोप लियो ने बुधवार को कहा, जीवन की मुश्किलों के बीच एक सुरक्षित पनाहगार पुकारी जाने वाली माता मरियम से प्रार्थना करें, जो युद्ध से घायल दुनिया के लिए सांत्वना की स्रोत हैं। उन्होंने अपनी यह अपील बुधवार को दोहराई, जब कलीसिया रोजरी की माता मरियम का पर्व मनाती है। पुर्तगाली भाषी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए पोप ने ब्राजील की संरक्षिका अपरिजिदा की माता मरियम को याद किया, जिनका पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। उन्होंने कहा, मैं आपको और आपके परिवारों को उनकी ममता भरी प्रार्थना को सपोर्ट करता हूँ। हमारी माता मरियम हमेशा आप पर नजर रखें। चीनी बोलने वाले तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए पोप ने मरियम को मुश्किल और दुखद पलों में शरण एवं बल बताया। पोप लियो 14वें ने वैटिकन संग्रहालय में कला के संरक्षकों को वैटिकन की कला को बचाने में मदद करने हेतु उनके उदार सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें खुद को सुंदरता के लिए खोलने और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के तरीकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। तकनीकी के दबदबे वाले इस युग में, जिसमें दक्षता एवं लाभ को ही अक्सर प्राथमिकता दी जाती है, यह बहुत जरूरी है कि हम चिंतन की भावना को बढ़ावा दें और सुंदरता को समय एवं जगह दें। पोप ने यह बात बुधवार को उस समय कही, जब वे आम दर्शन समारोह से पहले अमेरिका के लुइसियाना के वैटिकन संग्रहालय में कला के संरक्षकों से मिले। पोप ने कहा, चिंतन की भावना मानवता, खासकर युवाओं को बहुत मदद करेगी, न सिर्फ यह जानने में कि कला मानव की आत्मा की गहराई को ऊपर उठाने और दिखाने की कितनी काबिलियत रखती है और ईश्वर के प्रति हमारा खुलापन क्या है, बल्कि यह समझने में भी कि सच्ची संतुष्टि के लिए आत्मदान भी जरूरी है। उन्होंने चिंतन को सुंदरता के ईश्वर से मिलने का खूबसूरत अवसर कहा और संरक्षकों को प्रोत्साहन दिया कि वे खुद को इस सुंदरता के लिए खोलें और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के तरीकों पर विचार करें। उन्होंने आगे कहा,
कला और सुंदरता के लिए प्यार और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाकर रखने की इच्छा ही संरक्षकों को रोम लाती है। उन्होंने माना कि वे तीर्थयात्रियों के तौर पर भी रोम आते हैं और उम्मीद जताई कि प्रेरितों की कब्रों पर प्रार्थना में बिताया गया उनका समय संत पेतरुस के उत्तराधिकारी और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ उनके रिश्तों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि संरक्षक के तौर पर आपने खुद अनुभव किया होगा कि सुंदरता में इंसान के दिल की सबसे अच्छी इच्छाओं को जगाने की ताकत होती है, जो हमें खुद से आगे बुलाती और हमारी आत्माओं को ईश्वर के वरदानों की उदारता के लिए खोलती है। इस संदर्भ में उन्होंने वैटिकन म्यूजियम की कला को बनाए रखने के काम में लुइसियाना के कला संरक्षकों को उनके दिल खोलकर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बॉम्बे महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष बिशप डोमिनिक सावियो फर्नांडिस ने देश एवं देश के युवाओं के लिए प्रार्थना की एक आवश्यक अपील जारी की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों,

अत्यधिक चिंता उत्पन्न कर रहा है कि क्या सभी सक्षम नागरिक वोट कर पाएंगे जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।